0: तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।
1: Cultures Connect, CJMR 1320, the voice of the city.

वफा तो बेकदर, यार बोले दे खबर, मैं दुनिया से बेखबर, ए खुदा मुझे दे सबर, तू साथ है तो किसका डर, वो देता हर दिल में घर, तो क्यों इतना बेसबर। जिंदगी खेल नहीं, ये सिर्फ एक तमाशा है, कितनों को जेल हुई, जुर्म में इजाफा है, हम आना के देर हुई, इस कलम से वादा है।

0: उन कोई कैसे महफूज है मेरा सवाल किसी का उरूज
1: सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर हर सर बे असर बावफा तो बेगदर यार बोले दे खबर मैं दुनिया से बेखबर ऐ खुदा मुझे दे सबर तू साथ है तो किसका डर वो देता हर दिल में घर तो क्यों इतना बेसबर।

0: चूस कर गुठलिया फेंकती है।
1: पेंट चोटिया चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितन बहनू रेला आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।

को जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनकी, तू ज्यादा ना सुना कर उनकी, बस अपने ही किया कर मन की, बस अपने ही किया कर मन की। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू।

है कयामत मत तड़पाए अगर ना इंसाफी करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: नहीं मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah.

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

कुछ गल्लां दस सकदा, कुछ दस के भी समझ नहीं आनी। कुछ तेरिया ने, कुछ मेरिया ने, तेरा मिलना तेरा विछड़ना। तू कदे परछावे तो नेड़े, तू कदे सब तो दूर। तेरा हासा तेरा रोना, ते कदे कदे एकदम चुप होना। सब कुछ जो तेरे नाल रह के निक्की निक्की चीज नू जीना सिखिया, निक्कियां चीजां च खुश होना सिखिया, उच्ची उच्ची हसना सिखिया, दिल च की चल रहा तेरे नाल शेयर करना सिखिया। हां खुशी है मैनू तो जिंदगी किदां जीनी है ए दसिया, पर अफसोस तेरे बिना किदां जीनी है किते ए नहीं दसिया। गल हुण संघणी धुप दी गर्मी ते रातां दी त्रेल तक है, दुनिया जितन ते हारे हुए खेल तक है। ए मेरी खुद दी बनाई दुनिया, जिदा एक हिस्सा बना के थोड़े हिस्से कर लग्या। विद माई फर्स्ट ईपी एडिक्शन।

छड़ी न दिखाओ, गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

है सदियां खुशबू का दर है, ये शहरे मोहब्बत मेरा हम सफर है, केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर।

झीलों को जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है।

के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: जब तू साथ नहीं होती, तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

0: ओ सानू मंजला ना प्यार मेरे हीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं तकदीरा नाल वैर साडा लीरा ना नहीं।
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता है।

0: मैं तेरी हर गल ते यारा अमीन कीता सी, अमीन कीता सी।
1: Where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

मत पूछो क्या क्या होता है मोहब्बत के बाजार में, ये दिन भी हमने देखे हैं प्यार में, अपनों ने रखा

पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम। कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: हर वेले हुंदा नी इंसान यारों माड़ा कदे

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: आ कौन आ बिना गल्लो नहीं अखा जी चाड़ी फिर दे